0: दिल लेके देखो मुझे मत रोको, दिल लेके देखो मुझे मत रोको, मुझे पिला हो, मुझे पिला हो, मुझे पिला हो या कप्पो, दिल लेके देखो, दिल लेके रोको, दिल लेके देखो मुझे मत रोको, मुझे पिला हो, मुझे पिला हो, मुझे पिला हो या कप्पो। मिली नजर से नजर आईला पाहुणा लाजला
1: बाहुणे कसं होय असं तुमचं,
0: तुम्ही बाईचा चाचा कसा
1: बघणार,
0: नजर आई प्यार की खबर तेरे पीछे जबर जरा करो तो सबर रा।